0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात नहीं सिखारी हूँ सिखारी पूरे डायलेक्ट मलाई चाहिए
2: VFX सिनेमाज कुराही 10 नारायणपुर सौडीकुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र रामना

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 में 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro में 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: मध्यपश्चिम टाइम चेक, यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले AI पावर्ड कैमरा दुई वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज लमही नगर समितिको चौथो परिषद भक्ति थापा पार्क रातो डाँडा लमहीमा सम्पन्न रहल। समाजका अध्यक्ष तुलसीराम अधिकारीको अध्यक्षता एवं जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलको बरपौना एवं जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्माको विशेष आतिथ्यमा संचालित नगर परिषदमा बोल्न वक्ता कनक्से निवृत्त शिक्षक कनक्क एकजुट होकन विशिष्ट आतिथ्यमा संचालन नगर परिषदमा बोल्न वक्ताको नेक्सन निवृत्त शिक्षक र एकजुट होकन आफ्नो समस्या समाधानमा लाग पर्दा अब सरकारले आवश्यकता ठन्नसे जुनसुकै समयमा फेरि बिना शर्त सहयोग र तत्पर रहन भातमा जोड़ दिएर उसका निवृत्त शिक्षक राष्ट्र सेवक कनक्से विगत दिनमा यी मुलुकको लाख अमूल्य योगदान दिएर घोषे ऐना बजेटमा यथोचित सुविधा वृद्धि गर्न माग समेत गरल रह। लमही नगर समितिको चौथो परिषदमा जिल्ला सचिव गोविन्द रिजाल सांगठनिक प्रतिवेदन ओ कोषाध्यक्ष सोमप्रसाद बुढाथोकीसे आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रह। सामान्य छलफल पश्चात दुनू प्रतिवेदन पारित करगिल रह। उक्त अवसरमा परिषद सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न बरपौना जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल विशिष्ट अतिथि जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्मा आदर्श माध्यमिक विद्यालय देवपुरका प्रधानाध्यापक कुलचन्द्र शर्मा पौडेल सूर्य विनायक माध्यमिक विद्यालय नर्तीको प्रधानाध्यापक रामप्रसाद खनाल नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज गढवाका अध्यक्ष एवं जिल्ला सल्लाहकार कपिल देव खनाल राप्ती समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी राजपुरका अध्यक्ष पूर्णबहादुर चौधरी गोराई नगर समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र गौतम केन्द्रीय प्रतिनिधि शशिधर गेवाली आजीवन सदस्य बलराम गेवाली लगायत रहल रह। ऊ अवस्थामा 33 जना जनलौ आजीवन सदस्य हन। आजीवन सदस्यताका प्रमाणपत्र सहित समाजका हाम्रो चिनारी नामक स्मारिका समाजको लोगो अंकित ब्याज समेत वितरण गरिल रह। कार्यक्रमका आरम्भमा लमही नगर समितिका लेखा समितिका सदस्य युवराज सुविदेशी उपस्थिति अतिथिको नक्ला स्वागत करल रह। कलशे सचिव गोविन्द रिजालसे सहजीकरण करल रह। बंगलाचुली गाउँपालिकामा शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण ओ सेवा प्रभाव सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको आयोजना तथा बंगलाचुली गाउँपालिकाको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न हुइलख हो। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालका अध्यक्षता तथा बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुङ्क बरपौनामा कार्यक्रम सम्पन्न हुइलख हो। कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय सेवा प्रभाव अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न जिज्ञासाका जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश अर्याल जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपेक्षक दीपक श्रेष्ठसे दिहल रह। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालसे स्थानीय वासी उनकनक्से उठागेर विभिन्न समस्या गुनासा तथा जिज्ञासाका कानूनी आधार सहित स्पष्ट जवाब दिएल रह। ऊ अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङसे प्रभावित हेलक विभिन्न सार्वजनिक सेवाबारे विस्तृत जानकारी समेत प्रदान गरिल रह। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपेक्षक दीपक श्रेष्ठसे नागरिक सुनवाई कार्यक्रम अन्तर्गत बंगलाचुली क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षका हालसम्म दर्ता हुने विभिन्न घटनाका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरल रह। उहाँको अनुसार कर्तव्य जान सम्बन्धी 1, आत्महत्या सम्बन्धी 4, बाल विवाह तथा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी 1-1 ठो घटना दर्ता हो रहल। पुस्तक घरेलु हिंसाका 4, लैंगिक हिंसाका 63, सवारी दुर्घटनाका 2, गाली गलौज सम्बन्धी 2, अनलाइन ठगीका 3, विद्युतीय ठगीका 8, मोबाइल चोरीका 3 तथा अन्य 6 ठो घटना दर्ता हुनेक जानकारी उहाँ दिएरखल। सड़क डिभिजन कार्यालय दाङसे सड़क सीमा खाली गर एक सूचना मार्फत आग्रह गरिराखल। सड़क सीमा अतिक्रमित हुइबेर यातायात आवागमनमा बाधा पुग्न उस्तहको सड़क सुरक्षामा समेत असर पर्न हुइलक हुन्से अतिक्रमित संरचना हटाई पर्न हुइलक हुन्से सूचना प्रकाशित गरिलक जनागिल बा। आपको 15 दिनभित्र सड़क सीमा भित्र लक्षकको घर टहरा पर्खाल सम्बन्धी व्यक्ति वा संस्था अपने जो हटाकन सड़क सीमा खाली कराई कगिलवा जाकर अंतर्गत महेन्द्र राजमार्ग धानखोला से शिवखोला सड़क खण्ड हुलाकी राजमार्ग कड़ौवा से राजपुर सड़क खण्ड क्षेत्र खाली कर कगिलवा उसनाक मदन भण्डारी राजमार्ग शीतलपाटी से खलंगा बालुआ सहंगी सड़क खण्ड मुरकुटी घोराई तुलसीपुर से कालसे सड़क खण्ड लुबांग गहना सड़क खण्ड सहित मार्ग कोइलावास से लम्हे घोराई सड़क खण्ड राप्ती राजमार्ग अमेलिया से तुलसीपुर शीतलपाटी खोलापास सड़क खण्ड ओ रारा राजमार्ग चार मारे से चौर जहारी सड़क खण्ड क्षेत्र में सड़क सीमा खाली कर
आग्रह करगिल बा तोगिलक समय भित्र ऊ संरचना निहटिलस्ते प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालयस्थित संरचना हटिना ऊ क्रममा लग्ना खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था सेजो असुल उपर कर्जिना जानकारी करागिल बा। ओ शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय से आगामी असार एक गते से कक्षा एघारका पठन पाठन शुरू गर्न हो रहल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का नतीजा एक महीना भित्र प्रकाशित हुल्पास मन्त्रालय से कक्षा एघारका पठन पाठन असार एक गते से शुरू गर्न निर्णय कर रखो। ऊ निर्णय बमोजिम सूचना प्रभाकर सम्बन्धित विद्यालय ओ स्थानीय तहमा पत्राचार समेत कैकन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहन मन्त्रालय से निर्देशन दिए राखल। यसै आग एसईई का नतीजा कहिया प्रकाशन होइन वो कक्षा एघार का पठन पाठन शुरू होना कना अन्योल रह विद्यार्थी वो अभिभावक अन्योलता का अनचीर्ति शैक्षिक सुशासन कायम कना पठन पाठन हन प्रभावकारी बनाएकला मंत्रालय से एसई का नतीजा झट्ट प्रकाशन हुईलक से पठन पाठन फे समय बजो शुरू कर लगलग हो। हुईठाता आज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसन जाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहणसँग मैं शालिकराम चौधरी फे विदाही टू रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: 91 4 मेगाहर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराहीदान फोन नम्बर 082-581-210 थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्निङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
6: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओडालो घोराई जाँच फोन नम्बर 082-583-218।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: आदरणीय श्रोता, बैंक सूचना तथा संचार सहकारी संस्था लिमिटेड द्वारा संचालित आवाज इनको आवाज पश्चिम नेपालको आवाज रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जबाट प्रसारित जेस नागरिक कार्यक्रमबाट बोलिरहेका छौं। प्राविधिक मित्र दुवै शालिराम चौधरी र अमृता डाङ्गीको साथमा कार्यक्रम सञ्चालक दुवैराम खनालको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका पश्चिमी जिल्लाहरू दाङ र आसपासका क्षेत्रहरूमा रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा साथसाथै इन्टरनेट अनलाइन www.radioMP.org लगन गरेर अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेडियो एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर वा फेसबुकमा रेडियो मध्य पश्चिम पेजलाई लाइक गरेर संसारभरबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जको आफ्नै उत्पादित र प्रसारित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रमा रहनुभएका जेस नागरिकहरूको जीवनको भोगाई र गराईलाई उहाँहरूकै मुखार बिन्दुबाट हाम्रो श्रोतामा पस्किने कार्यक्रमको रूपमा लिएका छौं। आजका अतिथि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 चोरगाउँमा जन्मेर आफ्ना 68 वर्षन्त पार गरिसक्नुभएका यस दाङ जिल्लाका धरती पुत्र महेन्द्र चौधरी र उहाँको धर्मपत्नी सुन्दरी देवी चौधरीसँग म कुराकानी गर्न गएको छु। उहाँहरू दुवैलाई म रेडियो मध्य पश्चिम 91.4 मेगाहर्जबाट प्रसारित कृष्णगिरी सरकार कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेछु। स्वागत छ महेन्द्र चौधरी जी।
1: धन्यवाद।
0: सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? अब आज चाहिँ यस्तो पावन अवसरका दिन हामी तपाईँका आफ्ना जीवनका भोगाई र गराईलाई हाम्रा श्रोतामा पस्किने अवसर पाएका छौँ, जुन आज हामी गणतन्त्र प्राप्त गरेको पनि गणतन्त्र घोषणा भएको दिनदेखि आजसम्म जोड्दा लौ 18 वसन्तमा हामी चलिरहेका छौँ। यो चाहिँ यो पवित्र दिन प्राप्ति हुनको लागि हजारौं नेपालीका सपुतहरूले रगतको बलिदानी गरेर प्राप्त भएको चाहिँ उपलब्धि हो। यस उपलब्धि मार्फत हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशकै हर्षोल्लास तरिकाले आज गणतन्त्र दिवस मनाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो निरन्तर रूपमा जेस नागरिक सरकार कार्यक्रम चलिरहेको, साप्ताहिक कार्यक्रम चलिरहेको र आज यस पावन अवसर यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै पर्न गएकोमा चाहिँ हामी खुसी व्यक्त गर्दै अब म तपाईँसँग तपाईँका आफ्ना जीवनका भोगाई र गराईलाई हाम्रा श्रोतामा पस्किनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै महेन्द्रजी, तपाईँ अहिले त स्वस्थ हुनुहुन्छ, लगभग 70 हाराहारी लागेको एउटा चौधरीको छोरा भए पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, हृष्ट पुष्ट देखिनुहुन्छ। यस्तो शरीर लिएर कस्तो परिवारमा जन्मिनु हो? तपाईँ जन्मिने बेला कस्तो परिवार थियो तपाईँको?
1: हाम्रो जन्मिने बेला भन्दाखेरि हाम्रो खासै उता छैन, मध्यम वर्ग थियो।
0: अब यो दाङमा प्राय गरेर चौधरी समुदाय भित्रका समुदायहरू जुन चौधरी हुनुहुन्छ उहाँहरू प्राय दुई समुदायको चौधरी हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ जिमदार मध्येको चाहिँ चौधरी र रोइती मध्ये भन्छ। यो रोइती परिवारको हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू जिमदार परिवार? रोइती परिवार भन्नाले जस आफै दुःख गरेर हलो जोतेर अर्काको जोतेर नि खाने परिवार पर्यो, होइन? आफै दुःख गरेर। अनि तपाईँको बुवा आमाबाट तपाईँ जन्मिँदा आफ्नो घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनी के कति हुनुहुन्थ्यो
1: भन्दाखेरि, हाम्रो आमाबाट हाम्रो कति 5-6 वर्ष उमेरमा
0: आमा बित्नु भयो, होइन? कति दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ?
1: दाजुभाइ दुई,
0: दिदीबहिनी
1: छैन,
0: दुई भाइ मात्र।
1: हजुर,
0: ए दुई भाइ चाहिँ अझै हुनुहुन्छ।
1: हजुर।
0: अनि आमा 5-6 वर्ष हुँदा बितेपछि बुवाले फेरि विवाह गर्नु
1: गर्नुभयो।
0: अनि अर्को बिहेबाट कति जन्मिनु भयो? अनि
1: भएन,
0: बच्चै भएन,
1: फेरि नजन्मिँदै बुवा
0: बितिहाल्नु। अनि उहाँ दोस्रो आफ्नो आमा नभए पनि आफूलाई चाहिँ कर्म दिने आमा उहाँलाई तपाईँहरूले पाल्नुभयो?
1: हजुर।
0: आमा वृद्ध हुने बेलासम्म बाँच्नु भयो?
1: आमा कुनामा पनि भयो,
0: तपाईँको नभएर त
1: उहाँ त गइहाल्नु फेरि पहिले
0: पहिले जानु, उहाँ पनि बित्नु भयो। तपाईँ एउटा चौधरी परिवारमा जन्मिएको हुँदा चौधरी भाषामै कुरा गर्दा तपाईँलाई सजिलो, आफ्नै जुन चाहिँ केटाकेटी अवस्था होइन, लड्कन पड्कन होइन समयमा लिखे पढे पहिलाको हो कि नै?
1: लिखे पहिला त अगर पहिला सुरुमा मैले जो
0: घरमा कत्र क्लाससम्म पढि आफ्नै?
1: मै दसम पढ़ो,
0: दसम पढ़ो। ऊ जमा कहाँ को स्कूल में पढ़ी?
1: मैं पहला अथे रहा कर्जा स्कूल
0: कर्जा स्कूल
1: हिमन अशोक कुमार बुलरिया के ऋषिराज चौधरी मास्टर वहाँ एक कक्षा में वहाँ
0: पढ़ और दुई तीन चार
1: दुई कक्षा में फिर धरना गई
0: धरना गई
1: दुई कक्षा में धरना पढ़ दुई कक्षा से फिर अगड़ी सारा सर उहर उहर कर तिरना उसे कहते फिर रात गाँव गई तीन चार रात गाँव
0: पढ़
1: पांच छह से फिर धरना गई धरना से दूसरा सात से वहाँ पास कर दूसरा से तीस साल में नारायणपुर गई नारायणपुर में दस से मुहा हुई
0: एसएलसी
1: करें
0: एसएलसी कर
1: दसम पढ़े टेस्ट दिए टेस्ट तो पास कर
0: अपन छुट्टी मुट्टी उमेर हुईलक समय अपन डाइफे मुगिल हेरी बावन फे चल गई के पढ़ाई लग अपन लग बालक उमेर में के सियार सुसर के करलक
1: सियार सुसर कहते हमारे हजूर
0: बाजी बहन
1: बाबू बाजे बाजे नहीं बजे
0: बजे
1: बस वो सबसे मजा वो रहा जैसे वाकर पास है काका काकी
0: काकी
1: काकी रहा तो फिर आप बुढ़ी फिर मर गिल
0: मर गिल
1: जैसे काका काकी रहा काका काकी भक्खर काकी असों साउन बीस गटे
0: काकी
1: काकी
0: यही है पूर्व साल साउन बीस गटे काकी बिजगिल
1: बिजगिल
0: काकी सानो उमेर रहल समय काकी पकाइन खुवाइन सकु स्याहार सुसार काकी कर अब आफ्नो जातमा एसिन हुँदाखेरि आफन छावा छैन र आनक छावा छैन म डान्चे त फरक हुइठा काकी उहे फरक गर्ल कि नै
1: खासै फरक नै
0: लाग्छ आफन जैसिन गर्ल उहे गरि
1: फिस भर कसिन भए गेलै नै फिस भर पढाइ फिस खर्च भर म दैबामानी हुई कारणले
0: नै लागल
1: नै लाग
0: नै लाग
1: कहुँ
0: सरकारी फिर गर्ल कि विद्यालय फिर गर्दै
1: फिर नै कहुँ धरना त पुरै फिस माफ
0: हुई
1: अन्त हाफ
0: अन्त हाफ बस अनि अब एसएलसी करे नै सके कलकले चाहिँ जागिर वगेर करलक नै हो खेती किसानी
1: खेती किसानी
0: कहाँ कहाँ कत्र कत्र कसी कसी खेती करलक हुई थियो उही जमानामा कहाँ कहाँ थियो आफ्नो खेतीमा
1: कहाँ कहाँ हो खेती अब कसरी खेती
0: अब आधुनिक खेती करलक हो कि तरकारी
1: नै तरकारी त झन् बाटो नै रह खाली धान मकै
0: मकै
1: वस्त्र
0: उहे धान मकै गोरी मसुर
1: उहेको
0: चाहिँ आफ्नो गुजारा चलाइलाग्छ अनि ए उहे त पहिला जमानामा त बाटाघाटा पनि नयुठान बजार आइला पनि निगे आइपरल गाडी घोडा पनि नहुला कसी कसी दुःख पाइलाको पहिला जमाना
1: दुःख त भस्मै दुःख होइलक जिमदारनको कतरा दुःख कैगेल
0: जिमदारन काम गरे
1: जिमदारी यहाँ रजानक जिमदार यहाँ घर उहिले जाइ पर पोखरी निकाय जाइ पर निपोट के दिए जाइ पर
0: पैसा दिए था कि नहीं
1: पैसा नहीं हो खेती ओकर जगह लगाई
0: जगह लगाई कल कल से ओकर काम फांसी करे पड़ी
1: फांसी करना
0: पैसा कुछ नहीं है
1: खाइना फिर मजा से नहीं देना
0: खाइना से नहीं देना
1: नहीं देना मजा का
0: घर को आपन खाइलक जिमदार काम करे पड़ी
1: बस
0: ओकर बुजुर्ग विरोध करे नहीं बन रहा को
1: अगर विरोध करना नहीं करना नहीं लागे काम
0: नहीं लागे विरोध करी करके से जगह
1: नहीं
0: दिए था
1: नहीं देना
0: जगह नहीं दी कल कल से भूख भूख मर जाई थी
1: बस
0: वही
1: डरा
0: जिमदार जौन जौन करे कल से फिर आपने हाँ बाबू न हाँ बाबू करे परी
1: बस
0: हाँ
1: कराए
0: अब पहिला जमाना का दुख था आजकल का लड़कन पड़कन का पटेल पे कहानी जैसी हुई था ना पहिला आपने था पाइलक समय में जोन चाहिँ थारू जाति बिठा होइन ओकर यहाँ रहलक प्रभाती जाति जिमदार जाति कस्तो कस्तो हर्त कट्ठा पटाती बिठा हुने दुःख कस्तो कस्तो दिँदा
1: दुःख कना हो कसै का कहि अब कसरी दुःख कहुँ अब बेद बिगारी फिर करल फिटे हाँ अभी शंकर अच्छे शंकरी फसलपुर के बाहर प्रखंड रह जाए
0: बुढ़ा थोकी
1: बुढ़ा थोकी वाकर फोकटिया हो वाकर लाख हमरा धान में काट दिए गेली की बन पाछी निकल दिए गेली की धान लगा दिए जाए पर फोकटिया हो
0: फोकटिया ओकर जगह फिर लगा लग
1: जगह लगी लग नहीं हो प्रधान हुई लग कारण दिए
0: प्रधान हुई लग
1: प्रधान हुई ना
0: किसान फोकटिया काम करे
1: पर कसिन कराई ल खुवारक मनिन् रासुरिक मनिन् पक्कै फचकपुर चोरगाउँ अन्त त थानी पैटु
2: यी सक्कु गए फाँसे काम
1: उयो
2: कर्का चाहिँ हाम्रो नैकटी कल कला से उजुर बाजुर नै कर्लक
1: उजुर बाजुर नाइ कि हाम्रो मटाउ वस्तो हो मटाउ निकिल कर से ओ यार लगा दिए उहाँ बात लगा दिए दोस्रो वो खौ कला यहाँ
2: प्रधान चाहिँ कराई था
1: असिन कराई
2: पहिला पहिला एसिन बात फ्री सुने थिए हेरी न हाम्रो त उयो त आँखी त नै देखे नै मैले नै उही समस्या त नै भोगी हेरी ये पहिला पहिला मने जुन थारू समय दाएका मनै उठा ओकर चाहिँ लड़का लड़की जन्नी मनिन के लाग जिन्दार चाहिँ यौन शोषण के कठे कठा कह आवाज उठ्छ हेरी कसी कसी उठा
1: ओसिन त खासमै नि सुन्नु है
2: नै सुन्नु आपन उही भोगे नै परल
1: नै परल ओसिन त नि परल त खासै काम करिन यताउता भयो
2: काम गरेन दुखै भइल
1: दुख भयो बस्नु
2: आफ्नै कमिया बैठे परल कि नहीं
1: कमिया तो नहीं बैठे कमिया धैगी
2: घर में तीन ठो कमिया घर में डाली
1: तीन ठो कमिया दो ठो कम रही
2: घर में डाली
1: धैगी आप घर में ना कमिया नहीं रहना कमिया धैगी ना खेती दूसरा कहीं
2: आपने कमिया डालक समय कमिया को कैसी कैसी सुविधा दी थी कैसे कैसे हटक कर लग
1: का नाम कैसे घुंकनक अगारी जमाना मन कभी आठ मुड़ी धान रहा
2: एक वर्ष काम कर ल
1: एक वर्ष काम का आठ मुड़ी धान कर ल एक जोर
2: कपड़ा
1: दिए पड़ल
2: वो ट्रक में एक वर्ष काम का इतना पास
1: कमलर इंजन हूँ कमलर इंजन हूँ पांच मुड़ी धान
2: धान
1: एक परिवहन लुगा
2: लुगा
1: वो एक छिटवा अपने उठा के लीना मकई
2: मकई
1: ले जीना बस
2: बस और ट्रक हुई वो का जिंदगी एक वर्ष के जिंदगी
1: गई है
2: वैसे के नियम के पने लगो ये तो बहुत
1: समय नियम फिर जिम्मेदारन के कारण तो हुई बने लग सही
2: एक एक को मने इनको ओकर जन्नी हुई था लड़कन पड़गन फे हुई था ना और ओकर पाउना पाछी पे आई था उहे पांच मुरी आठ मुरी धान के वर्ष दिन खाए पुगी एक जोर कपड़ा लगा ली कल कल से एक वर्ष का लाख हुई जार फे आई जाए गर्मी फे लागल ना आजकल कतर कतर कपड़ा हुई कल कल से नहीं पूरी उसे जमाने में ऐसी कैसी हुई कल कल से जून चाहे कमया कर लक मने हुई ओकर लाख मन कैसे दुखाई था वाला
1: दुखल तो हुई ऐसी नहीं भोगिल करागिल
2: करागिल जोन कमया बैठे बसे वाला चाहे चौधरी परिवार बाबा कमिया परिवार बा ओकर लाख कतर कतर पीड़ा भोगे पड़ी ना ओकर लाख ऊ जमना जो सरकार बाबा कुछ नहीं है था रजवन तो उभेला पे पा भाई
1: उसने तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं यार
2: नहीं आज ये गणतंत्र आइलक बा 18 वर्ष में चल रख बा आज चाहे काठमाडौँ में जुन चाहिँ रजवन परिवार बाबै रजवन मानलक चाहिँ पार्टी उर्बा ओकर त आज राजा लिए पल कल कलसे मजा उठा सोक्कु अच्छा उठा कठा कि आपन इसक लागल कि
1: नहीं लागल
2: नहीं लागल
1: का कना कल से ई गणतंत्र कना चीज त हमार ज्या चीज कल से प्याज जहाँ बालक नी बोलना था फिर बालक मिलना था फिर हुई ना वो रजा रह गया था
2: नहीं उसे कुछ नहीं, नहीं लागल
1: कुछ भी नहीं एक तंत्र याद भे गेलो वह कारण ले में एक को ठीक नहीं लागल और भय राजा बारी होना आए कठो रजो ना आए मर बिचारी है
2: ये यदि ये नेटवा जोन बाबाई आंदोलन कठे कठे करलक चाहे काठमाडौँ में गईलक हाँ राजावादी भाषण वासन तो बहुत करलक वो करलक करलक तो राजावादी ये तो मजा वा नेता तो भ्रष्टार वस्तार फिर करलक राजावादी तो भ्रष्टार नहीं राजा नहीं करलक कठ वो का आप कैसी लगा
1: पार्टी बहुत मजा हो ना ये हमरा पहले तो कह पला कम्युनिस्ट हो उसे गल रहे ना खास तो पहले तो निर्दलीय रहलक हो रजावादी गेल पाँच सेना कम्युनिस्ट हो कांग्रेस के लग सुन मिल क्या वो के सुन मिल दस वही में कम्युनिस्ट भर विचार भर हमार कम्युनिस्ट को
2: तो आजकल आजकल से तो ये पार्टी ये विचार ये हुई कल कल से थे पहला चाहे जे चाहे असल काम कर लग करी कल कल से उहे मजा माने परी ना देश विकास करे परी एट्रक अब गाउँ घरका मने बाबै बेरोजगार मने बाबै ना ओकरलाई रोजगार दिए परल यसी के सिक्दै आफ्नो मनमा लागल कि नै लागल
1: अब कना हो का कना हो, ये राजावादी एक नंबर खुनखारावादी हो, कांग्रेस कना एक तो हमन से एक तो किता काटा जो हो, अभी धनी वर्ग फिटे हूँ हमरा अभी गरीब वर्ग फिटी वो भी फिर हमारा एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया हमारा पार्टी
2: सब कुछ है। एक हुई नहीं सकल अपन चाहे स्वार्थम भाजी के लिए
1: मजा लगा
2: ये टुकड़ा टुकड़ा हुई कल कल से राजा बाजी उठाए
1: बस ये सबसे दुखी है
2: दुखी है गणतंत्र लिए थे ओत्र दुख से आलत व्यवस्था हो ना
1: सबसे मजा अब हम लोग थी नहीं पहले कम्युनिस्ट तो एक रुखा हो हाँ
2: अब हमरे अपन ये राजनीतिक विचार अपन अपन ठावमा रहलक न ये हमार कार्यक्रम जेष नागरिक मने हुई कल कल से ऊ बुढ़ाइल मने का बुढ़ी बुढ़ाई का कतर कतर दुख बाबे न ओकर बात चाहिँ संचालक करलक कार्यक्रम हो अपने छावा छाइन कोई तो छाव बा कोई तो छाइन बा अपन
1: मोर दुई छ छाव के एक छ छाव दगे गेल हम दुई छ छाव के बा
2: तीन छ छाव एक छ छाव कहाँ गई गेल
1: मु आ सेना त मार
2: ए
1: वो ओठी से त हम माओवादी हो
2: ए अपन गणतंत्र के लाग छाव वाला लाग मने हो
1: बस बस बस ओ कला सेना रहा साथी साल में
2: मु गेल मागे तर रे सेना मा के
1: सेना मार
2: साठी साल
1: साठी साल
2: तीन टू छाव एक टू छाव
1: छोटा मारा
2: छोटा मारा
1: ये मल्लाव
2: मल्लाव
1: जो सब बरका
2: बरका घर में बावे ये मल्ला छाव के साथ अपने बावे कतर को उम्र का हुई था वो एक छोटा छावल
1: मारे जे
2: हाँ
1: उन्नीस
2: वर्ष जवान मिला छावल
1: जवान
2: घुमा गये
1: हाँ बस
2: कतर भोजन भोज करलक करलक समय मिला छाव घुमाइलक पेन ये गणतंत्र लिये कल कल से नेता ऐसी कैसी कर तक वहाँ उतर खाए कला उतना खाए कला बहुत पीर लागल काम लगता की नहीं लागे मन के पीर लागल तो अब आपने ये जत्रक छावा बाबा जुन जुन बा ये तो अपन लगता मजा कर लग
1: मजा बात एकदम मजा
2: जब मिथे साथ में बाबा संगे संगे वो बुराई हुई कल कल से भत्ता खाए मिला लोगी नहीं खाई लगोगी नहीं बिरदा भट्टा
1: के
2: आपने नहीं मिला को
1: आम कहाँ मिली है अड़सठी कराए सत्तर की दाल तो कसी गई
2: आपने अड़सठी में हुई ना
1: अड़सठी चालुआ चालू करके पुगता आप ये असारी पुगना
2: अब सत्तर हुई कल कल से खाई मिली
1: सत्तर हुई से खाई मिली
2: नहीं
1: मिली अड़सठी का रखला खाई लगते अड़सठी में खाने
2: पहला कल अड़सठी में खा डाला ये सत्र कर लग ना अब आपने जन्नी मने थारू मने संगे संगे दावे कतरक वर्ष को उम्र में आपने भोज के लगो
1: मैं कहबेर जोर ना 31 साल में भोज लगो
2: 17 साल के मने
1: 14 साल के मने
2: 28
1: 29 30 16
2: वर्ष में 17 वर्ष लागल भोज के लग 15 वर्ष के जन्नी हुई लग आपने 17 वर्ष के ना माँ के कर लग भोजे को की आपने अलग मैच
1: मांगी
2: कहाँ से कर लगो
1: जलवराशि
2: अब हमने अपन बात चाहे विचार तो हमारे हमार श्रोता मान पस्किली ना सुनाई लग अब हमारे अपन जन्मिक विचार चाहे हमार श्रोता मान पस्किए लग आज हम हमारे पास उइला को महेंद्र चौधरी जन्मी सुंदर चौधरी वहाँ लक हमारे रेडियो मध्य पश्चिम जिसना कार्यक्रम में स्वागत कर लग हूँ क्वेश्चन बा सुंदरी चौधरी मजा
3: ला
2: गाँव छोड़ लग बाजार आई कल कल से क्वेश्चन लागल
3: गाँव छोड़ कर बाजार आई लग खास मजा
2: खास मजा नहीं रहा नहीं रहा तो अब छावा जहाँ रहा नटी नया नटी जहाँ रहा हूँ यहाँ आए परी
3: बाध्यता
2: बाध्यता
3: का नहीं घर फुटना कई दर्थ कलश
2: घर फुटी कल कल से ना और जाऊ छावा अपन पास में हुई हुई छावा के साथ आए पर दिनचर्या कैसी कैसी की दिन भर का कैसी करके बिताए लगो आपने
3: कैसी बीती ना हो अच्छा अच्छा चे हम हर मोड़ ना नंटी ना कर कारी बार वो लगी थी वो नहीं थी कौन थी वो
2: खेती लगाई ना डिवा डिवा धान रोप में खेतवा सब गाँव में छुट गिल
3: गाँव में छुट गिल
2: यहाँ तो कोठा में कोठा के कोठा रहना हो
3: अपन वहाँ पर खेतवा लगा देगा यहाँ जाकर जाकर लगा
2: एकर बाजा रहेला घड़ेरी बाबे उहे में चिन्ह लगाए परी न आपने लिखल पढ़ल हो कि नहीं
3: लिखल पढ़ल एक अक्षर के नहीं एकदम
2: भोज कह के थोड़ा घर अलग जौन घर का काम खेती पाती कर लग उहे करके जिंदगी बीत गई अपन कोई ठो छावा कोई ठो छाई नहीं पाई लग बाबू
3: तीन ठो छावा पाई लग को
2: छाई नहीं मिल साथ में कोई ठो बाबे दू ठो छावा के का कहना तो ये एक ठो छावा देश के लाग चढ़ा गिल न गणतंत्र के लाग एक ठो छावा ओढ़ा गिल उहे समझाई कल कल से तो आमा के मन हो दुखाई था न अब जे हुई लग मन बुझाए परी हेरी अब का कहना हो अपन के नहीं हो एट्रक देश का थुप्रे विष्णुवतार नेपाली ईश्वरपुर को ज्ञान गई कल कल से गणतंत्र का अलग आज उहे गणतंत्र दिन में हमरे अपना विचार हमारे श्रोता माथ पस्किने कार्यक्रम लिएके आइलक बाबै अब बुराइल मनै हुई कल कल से पटवैन छावान से कराइना घृणा करना मजा से खाई वाई नहीं देना समस्या बाबै नेपाल को ये में गाँव घर में ढेर घर थारू घर फिर ये समस्या बाबै पर्वती घर फिर बाबै मंगरन घर फिर बाबै जौन जौन बा नेपाली हर घर में ये समस्या बाबे अपन घर में ये समस्या बाहो कि
3: नहीं हो इस समस्या
0: नहीं हो
3: यहाँ छावा पटवे के फसने मजा बाटे
0: मजा बाटे
2: जहाँ जौन छावा जौन पटेन गई कल कल सीपे दाई बाबन को मजा कर लग ये एक तो अपन दाई बाबन को इसी कर लग विचार आयला कोई छावा
3: बुरी भी तो क्या करते ना हमारे छावा दिन लेकिन आमी सब हमारे वो छाव के कुछ नहीं करल वो इस बात की
0: कुछ नहीं करल
2: मन नहीं दुखे नहीं दुखे
3: नहीं दुखे
2: छावा घर फुटल कल कल से अपन विचार से फुट गेल बाबा अमन को कुछ दोष न ले लग
3: नहीं
2: लगे
3: हमार जटा बा संपत्ति दुनु छावन बराबर देना हो
2: ए संपत्ति बराबर कर दी अपन भाग डारी की नहीं
3: अपन भाग तो डर दीजिए कतरनी छावा दानन से बरी लिए तो
2: पलन ले बरी उहे संपत्ति बराबर कर देवी ठीक है अपने पहला जमाना और आजकल का जमाना में फरक कैसी कैसी देख लिया आपने वो भोज हुई लग गाँव में आये कल कल से कैसी था आजकल कैसी परिवर्तन का हुई लग
3: परिवर्तन कसने परिवर्तन हो दूधी दूला कसी अब हमारा पहले भास्कर थोड़ा मेरा गोल चाल कर लाज लाग आप तो दूल्ही दूल्हा संग बैठ संग खेना करता ना उसी हम आप नहीं रह
0: नहीं रह
2: पहला जमाना नहीं थोड़ा से बोली कल कल से कुरा करी कल कल से तो गाँव में कुरा सीखा ना ये तो ये सुन बाय वो सुन बाय कहता
3: आप तो जमाना आज तक हो गया
2: वो मजा लागल वो जमाना मजा की ये जमाना
3: मजा तो आप लुगा फाटा ये आवती तो ये हो नहीं
2: नहीं हो लुगा फाटा लगे पहले लुगा का समस्या उठा नहीं मिला
3: कहाँ मिली तो पहले जमाना अंदर तो ठेठो गुन्या लगे ना खास मजा कल से तेर काठक चोल्ले लगे ना उस तो चोल्ले बुला से नहीं लगे ना चोल्ले लगे ना चोल्ले पाँच सौ काठा चाटल रहा
2: आज हमारे कार्यक्रम ओराल ओराल बाबे आज का अतिथि द्वे महेन्द्र चौधरी वहां को धर्म पत्नी सुंदरी चौधरी संग का मीठा मीठा वहां का भोए कराई का कुछ हमारा श्रोता में पस्किंदै यतिन्जेल आपको व्यस्त समय में आएर आपका विचार राख्हुने आज का अतिथि महेन्द्र चौधरी वहां को धर्म पत्नी सुंदरी चौधरी लगायत हम कार्यक्रम में सुनेर सहयोग संपूर्ण श्रोता रेडियो मध्यपश्चिम प्राविधिक मित्र अमृता ढांगी शालराम चौधरी लगायत संपूर्ण टीम लाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते आर यो कार्यक्रम बाट कार्यक्रम प्रस्तुत दैदीराम खनाल आज को इस कार्यक्रम में बिदा चाहन्छ हस्त धन्यवाद।